0: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

जीआईएस की भूमिका और हमारे दैनिक जीवन की गुणवत्ता मानकों की उपयोगिता को समझेंगे। इसी विषय पर सुनते हैं भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के साइंटिस्ट डी एवं जॉइंट डायरेक्टर श्री विवेक प्रकाश से सीमा कुमारी की बातचीत।

0: ప్రమాణాల దినోత్సవం సందర్భంగా
1: బిఐఎస్ హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వారి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद का ये विशेष कार्यक्रम. हर दिन हम अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनकी गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित कैसे होती है? विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी हैदराबाद के विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के वैज्ञानिक डी एवं संयुक्त निदेशक श्री विवेक प्रकाश जी। भारतीय मानक ब्यूरो देश में वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा मानकीकरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ISI मार्क, हॉल मार्किंग और गुणवत्ता मानकों के माध्यम से BIS उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी प्रोत्साहित करता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विवेक जी को, जो कि हमें बताएंगे कि BIS की भूमिका, गुणवत्ता मानकों के महत्व, उपभोक्ता जागरूकता और आम नागरिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। विवेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग BIS हैदराबाद ऑन AIR ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे।
0: जी, सबसे पहले श्रोताओं को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की प्रमुख भूमिका और इसके कार्यों के बारे में बताइए।
1: BIS की स्थापना 6 जनवरी 1947 को हुई थी। पहले इसको ISI के नाम से जाना जाता था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। पहले BIS का काम केवल स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन करना था और उसके बाद BIS ने सर्टिफिकेशन का काम स्टार्ट किया एंड देन 2016 में BIS एक्ट के तहत BIS को नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। तो BIS के जो महत्वपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं कोर एक्टिविटीज है वो है स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन में BIS विभिन्न वस्तुओं पे स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और फिर जो है हमारे पास ब्रांच ऑफिसेस हैं जो कि देश के सभी स्टेट्स में ब्रांच ऑफिसेस एस्टैब्लिश्ड हैं और ये जो है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का काम करती हैं, जिससे हम मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस देते हैं और उनको ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हो। इस तरीके से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन और क्वालिटी प्रोडक्ट के माध्यम से हम कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं।
0: जी, बाजार में जो उपलब्ध उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में BIS किस प्रकार योगदान देता है?
1: जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टैंडर्ड्स जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या टेस्टिंग क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स को अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करता है फिर हम उनको लाइसेंस देते हैं और लाइसेंस देने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। पहले हम उनका टेस्टिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें को हम विस्तृत रूप से जाँच करते हैं और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम टेस्ट करते हैं थर्ड पार्टी लेबोरेटरी में और तभी जाके हम उनको लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद ही कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा सकता है। तो ISI मार्क एक तरीके का थर्ड पार्टी एश्योरेंस है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता अच्छी है। तो इससे कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस होता है, जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और ISI मार्क या ISI चिन्ह देखते हैं तो उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और इट इज फिट फॉर यूज।
0: जी, बात अब हम करेंगे जो सोने और चांदी के आभूषण खरीदते समय हॉल मार्किंग होती है, उसका क्या महत्व होता है और उपभोक्ता HUID के माध्यम से आभूषण की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है?
1: सोने के आभूषण जो आपको पता है कि बहुत महंगे हैं और इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसे कस्टमर्स चीट होते हैं, तो इस कारण BIS ने HUID जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और ये हर ज्वेलरी पे यूनिक है। तो पहले क्या होता है कि हम असाइंग सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो भी ज्वेलर्स हैं वो अपने ज्वेलरी को असाइंग सेंटर्स में भेजते हैं और उस पर टेस्ट होने के बाद ही HUID लगता है। और HUID का एक विशेष महत्व ये है कि वो यूनिक है हर ज्वेलरी के ऊपर और वो वेरीफाई कर सकते हैं BIS केयर ऐप पे। जब वो वेरीफाई HUID डालेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको ज्वेलरी का फोटो, वेट, प्योरिटी, ये सारी चीजें आपको BIS केयर ऐप के माध्यम से आपके पास आ जाएंगी और इससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो भी आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो प्योरिटी उसकी सही है।
0: जी, यानी एक प्रामाणिकता है,
1: प्रामाणिकता
0: अगर हाँ कि आप जो सही चीजें खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। आजकल बाजार में नकली गुणवत्ता चिन्हों और भ्रामक दावों की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस करते हैं, उसमें हम यही बताते हैं कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसको वेरीफाई करें कि उसका चिन्ह जो लगा हुआ है प्रोडक्ट पे वो जेन्युइन है या नहीं। इसके लिए हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है BIS केयर ऐप। इसमें अगर आप कोई भी जनरल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए प्रेशर कुकर है या फिर गैस स्टोव है, तो उसमें ISI नंबर रहेगा और नीचे उसका CML नंबर लिखेगा। तो जब भी आप मोबाइल

0: ऐप में वेरीफाई सीएमएल नंबर डालेंगे तो आपको कौन सा मैन्युफैक्चरर है, क्या प्रोडक्ट वो बना सकता है, क्या क्या वैरायटी है, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई जाएंगी। तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका जेन्युइन है। साथ ही साथ वैसे ही जैसे आप सोने की आभूषण खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो उसमें भी आप वेरीफाई HUID जो कि यूनिक है हर ज्वेलरी पे, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका ज्वेलरी टेस्ट अच्छे से किया गया है और उसकी गुणवत्ता अच्छी है। और
1: जी
0: साथ ही साथ आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर बिल होने चाहिए, कि आपको फ्यूचर में अगर लगता है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप बिल के माध्यम से BIS पे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।
1: जी BIS द्वारा निर्धारित जो भारतीय मानक उद्योगों विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है?
0: हम लोग लगातार MSMEs को प्रोत्साहित करते हैं कि वो BIS का लाइसेंस लें। इसके लिए हमने कई विशेष छूट भी दे रखी हैं। जैसे हम लोग का एनुअल मार्किंग फीस होता है, तो अगर कोई माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है तो 80% ऑफ द डिस्काउंट है MSMEs के लिए, अगर कोई स्मॉल स्केल है तो 50% डिस्काउंट है। साथ ही साथ हमने अब लैब का रिलैक्सेशन भी कर दिया है। कई बार मैन्युफैक्चरर्स जो है उत्पाद तो बना लेते हैं पर उनके लिए कठिन होता है कि वो अपने इन हाउस टेस्ट फैसिलिटी डेवलप कर पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इस कारण जो है हमने मैन्युफैक्चरर्स को छूट दी है कि वो थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से भी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सारी विशेष सुविधाएं दी गई हैं MSMEs को BIS के द्वारा।
1: जी, स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं में गुणवत्ता और मानकीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए BIS की क्या-क्या पहले हैं?
0: BIS का ये मानना है कि जो बच्चे हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ क्वालिटी, तो
1: जी
0: हम बच्चों को भी ये जागरूक करते हैं कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप बाजार में जाके प्रोडक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ साथ अपने घर में सोसाइटी में ये क्वालिटी का जो है कैंपेन है वो चला सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्कूलों में स्टैंडर्ड्स क्लब का स्थापना किया है। स्टैंडर्ड्स क्लब के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स उपलब्ध हैं, और हम उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स ये एक पत्रिका आती है, तो इसमें हमने बताया है कि स्टैंडर्ड्स में क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के थ्रू हम जाँच करते हैं। तो ये आप को रिलेट कर सकते हैं कि उनके विषय में क्या क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगते हैं और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या स्टैंडर्ड्स में हैं। तो बच्चे इसके माध्यम से को रिलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स को अपने करिकुलम से।
1: अच्छा, जैसे कि अभी आपने बात किया लर्निंग थ्रू स्टैंडर्ड्स,
0: यस
1: ये जो किताब है ये क्या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं उनको पता भी होना चाहिए कि स्कूल, कॉलेजों और खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये किताबें कैसे दी जा सकती हैं?
0: हमने स्टैंडर्ड्स क्लब बनाए रखा है
1: जी
0: और उसी स्कूल्स में हम ये पत्रिका प्रोवाइड करते हैं, और हमने ये सभी जगह जितने भी स्टैंडर्ड्स क्लब भारतवर्ष में बने हुए हैं तो BIS ने सभी जगह पत्रिका दे रखी है।
1: मान लीजिए किसी उपभोक्ता को किसी उत्पाद की गुणवत्ता या फिर BIS प्रमाणन को लेकर शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ और किस प्रकार दर्ज करा सकता है?
0: यदि किसी उपभोक्ता को कोई भी शिकायत है क्वालिटी रिलेटेड, या फिर प्रोडक्ट पे ISI मार्क ढंग से नहीं लगा हुआ है, या फिर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है पर उसमें ISI नहीं लगा हुआ है, तो
1: जी
0: उनके पास दो प्लेटफॉर्म है। या तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं जो कि BIS कैर ऐप है, उसमें लॉज ए कंप्लेंट विद BIS है, उसमें आप क्लिक कीजिए और प्रोडक्ट की फोटो, आपका बिल, रसीद, जो भी आपके पास अवेलेबल एविडेंस है वो आप हमें जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं और उसमें फोटोज वगैरह डालते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है। साथ ही साथ आप हमें
1: जी
0: ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली हमारे ब्रांच ऑफिस में विजिट करके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं।
1: जैसे मान लीजिए ये तो महानगर है, यहाँ पे आपके ऑफिस जो है सब लोग जानते हैं, जैसे छोटे शहर के लोग, छोटे गांव और कस्बों के लोग हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएं?
0: तो उनको हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वो
1: जी
0: मोबाइल के माध्यम से जो BIS केयर ऐप के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो हमें पत्र भी लिख सकते हैं
1: जी
0: कि आपकी क्या शिकायत है, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई
1: मतलब जो
0: करते
1: भी
0: हैं।
1: नजदीकी आपका स्टैंडर्ड
0: जो
1: मतलब
0: भी
1: ऑफिस
0: नजदीकी
1: है।
0: हमारा ब्रांच ऑफिस है,
1: जी जी
0: हमारे
1: जी
0: ब्रांच ऑफिस हर स्टेट में है, तो वहां पे उनको संपर्क करना पड़ेगा।
1: जी डिजिटल इंडिया का जमाना है तो डिजिटल तकनीक के इस दौर में उपभोक्ताओं तक तो गुणवत्ता संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए BIS किन आधुनिक माध्यमों का प्रयोग कर रहा है?
0: हमने कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, मान लीजिए आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, तो
1: जी
0: इसमें भी हमने कई तरह के प्रचार प्रसार किए हैं। साथ ही साथ BIS केयर ऐप है तो हम कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं कि आप BIS केयर ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मानक ऑनलाइन, तो इसमें भी आप हाउ टू डाउनलोड स्टैंडर्ड्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से BIS भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके क्वालिटी के जो स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: क्योंकि सब जगह AI की बात चल रही है तो हम भी ये आपसे जानना चाहेंगे कि BIS जो है वो AI को अपने काम को कन्वीनियंट बनाने में कैसे उपयोग कर रहा है और श्रोताओं को जागरूक करने में भी कैसे

0: कर रहा है।
1: एआई का यूज़ बीआईएस, वही जैसे मैंने कहा कि हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो
0: जी
1: कि मानक ऑनलाइन है या फिर बीआईएस की वेबसाइट है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कंपलसरी सर्टिफिकेशन है, या फिर मुहरांकन जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप बीआईएस के साइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हमने जो टूल बनाया है वो बीआईएस केयर ऐप है, ये एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर अवेयरनेस टूल है, और जब भी कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। आप अगर सोने चांदी के आभूषण खरीद रहे हैं तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है उच्च क्वालिटी का है, उसकी प्योरिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑन द स्पॉट ज्वेलरी खरीदते समय, प्रोडक्ट खरीदते समय आप वेरीफाई कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताई थी कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को लेके आज ये साक्षात्कार जो है वो कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्या है, ये क्यों मनाया जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है।
1: वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता
0: जी
1: है, इस साल भी 14 अक्टूबर 2026 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मना रही है। तो इसके पीछे मैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही विश्व युद्ध दो हुआ था उसके बाद जो है विश्व में ये कोशिश की गई थी कि जो भी स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं अलग अलग देशों में उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने जो कि सभी देश अनुपालन करें उसका। तो इसके लिए 14 अक्टूबर 1946 को 25 देशों ने लंदन में कॉन्फ्रेंस किया, और उसके बाद ही आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया। तो इस कारण हर वर्ष 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। और साथ ही साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर पाए कि स्टैंडर्ड्स हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड्स हमें दिखता नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड्स जो है हर पार्ट में अपना रोल प्ले करता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
0: जी
1: इस,
0: बिल्कुल
1: जैसे कि आप मोबाइल फोन चार्जर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होता इसके ऊपर और इसके डायमेंशंस को हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते, तो आप देखिए कि हर मोबाइल फोन चार्जर के लिए आपको अलग अलग सॉकेट्स का यूज करना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: आपको लगता भी नहीं है कि हम ये काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक सॉकेट चाहिए जिसमें आप अपने चार्जर को प्लग इन कर पाए। तो एक छोटा सा कार्य जो कि बहुत सरलता से अभी हम कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये खूबसूरती है स्टैंडर्ड्स की, वो दिखाई नहीं देते हैं पर वो हमारे काम को बहुत सरल बनाते
0: जी,
1: हैं,
0: पीछे से उनका कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता
1: महत्वपूर्ण
0: है।
1: है।
0: अजी से हमारे श्रोताओं को जानना भी चाहिए और आप बता भी रहे हैं। चलते चलते समय इशारा कर रहा है कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ें। आप आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो खरीदारी करते समय गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के प्रति अधिक जागरूक रहें।
1: देखिए बीआईएस का हमेशा से यही मोटो रहा है कि वो क्वालिटी जो इन्वायरमेंट है, क्वालिटी इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा दें। इसके लिए हम कई तरह के जतन कर रहे हैं, कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम कंज्यूमर अवेयरनेस को बहुत एग्रेसिवली हम इसको परस्यू करते हैं। इसमें हम कंज्यूमर्स को बता रहे हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसके पीछे कौन सी स्टैंडर्ड है या फिर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपको उसके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कंज्यूमर सशक्त है तभी वो अपने लिए राइट डिसीजन ले पाता है, तभी वो
0: जी
1: अपने प्रोडक्ट को
0: बिल्कुल
1: अच्छे से चूज कर पाता है। तो हम विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे यही आवेदन करते हैं, यही अनुरोध करते हैं अपने कंज्यूमर से कि जो भी वो प्रोडक्ट्स खरीदें तो वेरीफाई करें कि वो अच्छी क्वालिटी का है, उसका चिन्ह का वेरीफाई करें और तभी प्रोडक्ट खरीदें।
0: जागरूक जनता ही सशक्त भारत की
1: यस
0: पहचान है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: हाँ श्रोताओं, आज की बातचीत से यह स्पष्ट है कि गुणवत्ता मानकों की जानकारी रखना और प्रमाणित उत्पादों का चयन करना सुरक्षित खरीदारी तथा जागरूक उपभोक्ता बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी संदेश के साथ विवेक प्रकाश जी, आपने वक्त निकालकर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे BIS के साइंटिस्ट डी एवं जॉइंट डायरेक्टर श्री विवेक प्रकाश से सीमा कुमारी की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया।
1: यस, दैट वाज द इंटरव्यू बाय सीमा कुमारी ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, इंटरव्यू विद साइंटिस्ट डी जॉइंट डायरेक्टर ऑफ BIS श्री विवेक प्रकाश बाय सीमा कुमारी।
2: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम।

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9
1: का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Electronics and Information Technology Minister

का सम्मान पद्मभूषण भी मिल चुका है। इतनी बड़ी बिलियनेयर होने के बाद भी आज भी वो एक एकदम सिंपल साड़ी पहनकर जमीन पर बैठती है। उनका सबसे बड़ा लेसन यही है कि कामयाबी आपके सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए, बल्कि आपके पैर जमीन पर होने चाहिए। चलिए इस मिडवीक वेंसडे को थोड़ा और पॉजिटिव बनाते हैं इस अगले प्यारे से सॉन्ग के साथ। स्टे ट्यून्ड।

CCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आपस में बोलने लगे कि ये तो कोई बेचारी बहन जी लग रही है, शायद गलत लाइन में आ गई है। सुधा जी ने चुपचाप उनकी बात सुनी और कुछ नहीं बोले। बाद में जब भी मीटिंग रूम में वही लोग उन्हें इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन की चेयर पर बैठे हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। सुधा जी कहते हैं कि आपके कपड़े आपकी औकात नहीं तय करते, आपका काम और आपका ज्ञान तय करते हैं। चलिए इस इंस्पिरेशन के साथ और एक ब्यूटीफुल गाना सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।

Welcome back, listeners. You're listening to Akashvani FM Rainbow 101.9 with me, Jane Namrita. वैसे आजकल के यूथ के साथ उनका जो बॉन्ड है ना, वो देखकर एकदम मज़ा आ जाता है. इंस्टाग्राम पर उनके रील्स और क्लिप्स इतने वायरल होते हैं ना, क्योंकि वो किसी दादी नानी की तरह लेक्चर नहीं देती, बल्कि एकदम दोस्त बनकर समझती हैं. उन्होंने एक बार कहा था कि आजकल की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, पर थोड़े इम्पेशेंट भी हैं. उनका यूथ को लेकर एक ही बढ़िया सजेशन होता है कि लाइफ में जब फेल्यूर आए ना, तो उसे डरना नहीं. फेल्यूर एक पिट स्पॉट है, डेस्टिनेशन नहीं. उनका ये रिलेटेबल अंदाज ही है जो उन्हें हर जनरेशन का फेवरेट बना देता है, चाहे कोई 15 साल का बच्चा हो या 50 साल का अडल्ट. लेट्स लिसन टू अनदर ब्यूटिफुल सॉन्ग.

PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ಮೀಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್.
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है.
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.

PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
1: हर सही

0: फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
0: सजग भारत, जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नयरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नयरंग में पेश होने

0: उसके बाद आप प्रोग्राम गीत सुर लेखा तेजा में सुनेंगे खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी नगमे और प्याम शब के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होगा तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए नए रंग का आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से। लीजिए समात कीजिए हरफ ताबिंदा, तहरीर पेशकश है मोहम्मद उसामा की। मफाद परस्ती एक ऐसी सिफत है जो इंसान को खुदगर्जी और इखलाकी गिरावट की तरफ ले जाती है, जिसमें इंसान हर काम अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए करता है, चाहे उसके नतीजे में दूसरों को नुकसान ही क्यों न हो। आज के दौर में खुदगर्जी ने माशरे को जड़ों से कमज़ोर कर दिया है और इंसानी रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। मुनाफिक और खुदपरस्त दोस्तों की हमदर्दियाँ दुश्मनों की तलवारों से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। किसी शायर ने कहा है, सांप के काटने से मैं डरता नहीं, सांप के काटने से मैं डरता नहीं, हाँ मगर सांप वो आस्तीन ही न हो। इंसान फितरी तौर पर एक समाजी मखलूक है और इसे दूसरों के साथ मिलकर रहना होता है, लेकिन जब वो सिर्फ अपने फ़ायदे को तरजीह देने लगता है तो माशरती तवाज़ुन यानी सोशल बैलेंस बिगड़ जाता है। मफाद परस्ती की वजह से लोग एक दूसरे पर एतमाद खो देते हैं, भाईचारे की फ़िज़ा ख़त्म हो जाती है। इसलिए मफाद परस्ती न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह है। जब हुक्मरां, ताजिर या आम शहरी अपने ज़ाती फ़ायदे को तरजीह देते हैं तो इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, समाज तरक्की के बजाय जवाल की तरफ बढ़ने लगता है। साहिल लुधियानवी ने कहा है, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। ये शेर हमारे माशरे की तल्ख हकीकत को जाहिर करता है कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के वक्त साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में किनारा कश हो जाते हैं। मफाद परस्ती से बचने के लिए हमें अपने अंदर इखलाक़ी अकदार मोरल वैल्यूज़ को फ़रोग देना होगा। हमें चाहिए कि हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, सच्चाई और इंसाफ को अपनाएं और अपने ज़ाती फ़ायदे के बजाय इज्तमाई भलाई को तरजीह दें। अगर हर फर्द अपने किरदार को बेहतर बनाए तो माशरा खुद ब खुद तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने एक शेर में इस बात की तरफ इशारा किया है, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आखिर में ये कहना बजा होगा कि मफाद परस्ती एक ऐसा नासूर है जिसे ख़त्म किए बगैर एक सेहतमंद माशरा कायम नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम खुदगर्जी को तर्क करें और एक खुशहाल माशरे की बुनियाद रखें।
1: सामिन इकराम, अभी आपने सुना हरफ ताबिंदा, तहरीर व पेशकश थी मोहम्मद उसामा की। जी दोस्तों, मफाद परस्ती के बग़ैर ही समाज तरक्की कर सकता है। मफाद परस्ती समाज को हमेशा तनज़ुली की तरफ ले जाती है, तो इसीलिए हमें भी मफाद परस्ती से बचना चाहिए। और सामिन इकराम, और अब आइए सुनते हैं मत सहल हमें जानो टॉक, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र व शख्सियत पर मौना हाली का असर इस टॉक को की तहरीर व पेशकश है खैरुन निसा अलीम साहबा की। लेकिन इस टॉक पे जाने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और अभी हाजिर होते हैं।

0: FM Rainbow 101.9.
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले

0: दुख को समझा और उनके बुलंद हौसलों पर मरहम रखा। उन्होंने मुस्लिम कौम को पस्ती से बाहर निकालने का जरिया तलाश किया। सर सैयद ने हाल ही से कौम को बेदार करने के लिए एक नज्म लिखने की ख्वाहिश इजहार किया। चुनाचे हाल ही ने कौमी जज्बे से सरशार होकर कौम को बेदार करने के लिए एक तवील नज्म लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुए। एक सच्चे और मुखलिस शायर के दिल की आवाज को दर्द आशना इंसानों ने समझा और उनकी हिम्मत हौसले की दाद दी। सर सैयद ने जब इस नज़म को पढ़ा तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। उन्होंने बड़े दिलकश अंदाज में हाली के इस गैरफानी कारनामे की दाद दी। जबान सलीस, सादा और दिल नशीन है। इस नज़म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके अंदर के उसके बहुत से बंद ऐसे हैं जो बगैर चश्मे नम पढ़े नहीं जा सकते। ये किताब बहुत मकबूल हुई। इसकी मकबूलियत की बड़ी वजह उसकी हकीकत निगारी है। हाल ही का यह मुसद्दस सर सैयद की तहरीक का एक जुज़ है। सर सैयद की तहरीक बड़ी हमागीर इस्लाही तहरीक थी। मजहब, मुआशरत, तालीम, शेर व अदब, इंशा और सहाफत सब उसी के हल्के में आ गए। सर सैयद का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमान नए बदलते हुए हालात का मुकाबला कर सकें, उनमें जदीद तालीम और रोशन ख्याली फैलाई जाए, पुराने रस्म रिवाज, बेहुदा तकलीद और रिवायत परस्ती की बेखुनी की जाए, अखलाक सुधारा जाए, कौम और कौमियत का तसव्वुर पैदा किया जाए, कौमी इज्जत और इज्जत नफ्स की तालीम दी जाए। सर सैयद की ऐसी हमागीर तहरीक में उनके बहुत से शरीककार और रफीक शामिल थे। उन्हीं में एक हाली भी थे। मुसद्दस हाली एक इस्लाही नज़म है जिसका मकसद मुसलमानों को उनके माजी और हाल की दास्तानें सुनाकर तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए आमादा करना था। सर सैयद हाली की नज़मों पर जो मसनवियों की हैयत में पेश हुई थी रिव्यू करते हुए तहजीबुल अखलाक 1292 हिजरी में लिखते हैं, मौलवी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की मसनवियों ने तो हमारे दिलों के हाल को बदल दिया है। उनकी मसनवी हुब्बुल वतन और मसनवी मनाजिरा रहम व इंसाफ जो पंजाबी अखबार में छपी, दर हकीकत हमारे इल्म व अदब का एक कारनामा है। उनके अल्फाज की सादगी, बयान की सफाई, उम्दगी ख्याल हमारे दिलों को बेख्तियार खींचती है। अल्फाज की तरकीब में सादगी कैसी उम्दा है कि दिल में उतर जाती है। हाल ही की यही सीरत और शायरी का सर सैयद अहमद के फिक्र फन और शख्सियत पर बड़ा गहरा असर महसूस होता है। सर सैयद खान ने जो 19वीं सदी के निसफ आखिर में हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुदब्बिर थे, 1857 के हंगामे के बाद तमद्दुन के बिखरे हुए अज्जा को कौमियत या मिलियत की तहरीक में समेटने की कोशिश शुरू की। सर सैयद की ज़ात में हाली को वो रहनुमा मिल गया जो कौम के तसव्वुर में वो मंजिल मकसूद और कौमी तालीम की तहरीक में वो राह अमल नज़र आ गई जिसकी उन्हें तलाश थी। इस अज़्म का पहला नतीजा मद्दोजज़र इस्लाम था जो सर सैयद की फरमाइश से 1879 ईस्वी में लिखा गया। इस भी शेर हाली के दूसरे दौर की कुल खसूसियात मौजूद हैं। थोड़ी सी मुद्दत में ये नज़म मुल्क के अतराफ में फैल गई। लोग इसको पढ़कर बेइख्तियार रोते थे और आंसू बहाते थे। हाली की सीरत और शायरी हर कदम पर उनकी रहनुमाई करती है और जबान हाल से ये कह रही है, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। शुक्रिया
1: दोस्तों। अभी आपने सुना मत सहल हमें जानो में टॉक, जिसका उन्वान था सर सैयद अहमद ख़ान की फ़िक्र व शख्सियत पर मौलाना हाली का असर। तहरीर व पेशकश थी खैरुन्नसा अलीम साहबा की। और अब दोस्तों वक्त हो चुका है नगमों के सफ़र पे रवाना होने का। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जाका, जहाँ बातें भी होती हैं, यादें भी ताज़ा होती हैं और फिर मौसीकी के वो रंग बिखरते हैं जो दिल के तारों को छेड़ देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी अहमियत हमें उस वक्त महसूस होती है जब वो हमारे पास ना हो। घर में बिजली ना हो तो परेशानी, घड़ी ख़राब हो जाए तो वक्त का हिसाब मुश्किल, फ़ोन काम करना बंद कर दे तो रबते में रुकावट, और अगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की किसी चीज़ का मेयार ठीक ना हो तो कभी पैसे का नुकसान, कभी वक्त का नुकसान और कभी सेहत का ख़तरा भी पैदा हो सकता है। ज़रा सोचिए, हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो क्या चाहते हैं? चीज़ अच्छी हो, कीमत मुनासिब हो, देर तक चले और उसके इस्तेमाल से हमें कोई नुकसान न पहुँचे। बस दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू इसी

मेयार के बारे में है, यानी 14 अक्टूबर को दुनिया भर में आलमी यौम मेयारात यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मेयार हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा महफूज, आसान और काबिल एतमाद बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को इल्म, दिलचस्प बातों और सुरीली मौसीकी के साथ यादगार बनाते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसकी धुन दिल को सुकून दे और माहौल में खुशी के रंग भर दे।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म आमने सामने से था और जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। दोस्तों, हम पहले ही बात कर रहे थे कि आज यानी 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है, यानी आलमी यौमे मेयारात। दोस्तों, स्टैंडर्ड यानी मेयार का हमारी ज़िंदगी में क्या असर होता है, चाहे वो मेयारी चीज़ें हों, चाहे वो मेयारी शख्सियात हो, चाहे वो मेयारी लोग हों, तो मेयार हमारी ज़िंदगी पे यकीनन असर डालता है। तो आज के इस ख़ास दिन पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे क्यों मनाया जाता है, और उसी के सिलसिले में दोस्तों अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो महसूस होगा कि मेयारात हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर हिस्से से जुड़े हुए हैं। सुबह आँख खुलते ही घड़ी देखने से पहले लेकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने तक, नाश्ते में पैकशुदा चीज़ें खाने से लेकर दफ्तर या स्कूल जाने तक, हर जगह किसी न किसी तरह मेयार की अहमियत सामने आती है। मिसाल के तौर पर अगर मुख्तलिफ मुल्कों में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन और दूसरे बरकी आलात के लिए मुश्तरका तकनीकी उसूल ना हों तो उनकी तैयारी, हिफाजत और एक दूसरे के साथ मुताबकत में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हिफाजती निज़ाम, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात और इमारतों में लगाए जाने वाले बरकी निज़ाम के लिए भी मुनासिब मेयारात अहम होते हैं। यहाँ तक कि खुराक की पैकिंग, प्रोडक्ट पर दर्ज मालूमात और वज़न व पैमाइश के दुरुस्त होने का ताल्लुक भी कंज्यूमर के एतमाद से है। और हाँ, मेयार का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ अच्छी महंगी हो वही अच्छी होगी। असल बात यह है कि कंज्यूमर को या सारिफ को जो चीज़ दी जा रही है वो अपने वादे और मकसद के मुताबिक होना चाहिए। दोस्तों, हम भी अपने मकसद से भटकना नहीं चाहते और आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत। लीजिए, समाप्त फरमाइए।

दोस्त, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीला सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, अभी आपने फिल्म शागिर्द से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तान पूरी ने। दोस्तों, आज गीत सुरीले गाता जा में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, यानी आलमी यौम मेयार के बारे में हमारी गुफ्तगू हो रही है सामईन आपसे। सामईन, आइए एक छोटी सी सूरत हाल का तसव्वुर करते हैं। दो दोस्त बाज़ार जाते हैं। एक दोस्त सस्ती चीज़ खरीद कर खुश होता है, जबकि दूसरा दोस्त थोड़ी तहकीक करके, थोड़ी रिसर्च करके एक ऐसी चीज़ ख़रीदता है जिसकी हिफाजत, कारकर्दगी और मेयार के बारे में मुनासिब मालूमात मौजूद है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसने बेहतर फैसला किया। इसका जवाब सिर्फ कीमत देखकर नहीं दिया जा सकता। ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों की कारकर्दगी, हिफाजत, पायदारी और ज़रूरत के मुताबिक मौजूनियत का जायज़ा लिया जाए। दोस्तों, यही वो शऊर है जो हमें एक समझदार कंज्यूमर यानी सारिफ बनाता है। ख़रीदारी करते वक्त सिर्फ इश्तहार, पैकिंग या कम कीमत से मुतासर होने के बजाय मालूमात पढ़ना ज़रूरी है। ज़रूरी हिफाजती निशानात देखना, वारंटी की शराइत समझना और मोतबर दुकान से ख़रीदारी करना भी अहम है, क्योंकि अच्छा इंतखाब सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं बल्कि अपने पैसे की सही कदर हासिल करने का नाम है। अच्छा इंतखाब, क्योंकि चमकता जो नज़र आता वो सब सोना नहीं होता।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी गीत। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि मेयार या स्टैंडर्ड इंसानी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं और आज का जो दिन है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हर चीज़ के मेयार की तरह शायरी का भी एक मेयार होता है और लोग मेयारी शायरी सुनना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा सामेईन कि शायरों के साथ एक मजबूरी है कि अगर वो कुछ शायरी लिख लेते हैं या शेर कह लेते हैं तो उनको बड़ी बेचैनी रहती है कि वो शेर तो किसी न किसी को सुनाना चाहते हैं, कैसे भी कोई एक सामे या सुनने वाला ढूंढते रहते हैं और वो बेचैनी वो ख़त्म कर देना चाहते हैं, नहीं मेरा शेर कोई तो सुने। तो एक शायर साहब जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उन्होंने जो है कोई शेर लिखा था, तब वो सुनाने के लिए बेचैन थे, कोई मिल नहीं रहा था। मुश्किल से एक मुसाफिर से उन्होंने अपना मतलब तारुफ़ कराया और थोड़ा मामलात को आगे बढ़ाया और फिर उन्होंने अपने तारुफ़ में ये भी कहा, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं शायर हूँ तो सामने वाले मुसाफिर ने फौरन ही जवाब दे दिया, भाई साहब मैं बहरा हूँ। तो ये थी लतीफ़ों की दुनिया दोस्तों, लेकिन मेयार हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे शायरी हो, चाहे चीज़ें हो, अशिया हो या दूसरी कोई भी चीज़ हो। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माहिरीन, इंजीनियर, साइंसदान और दूसरे मुतल्लिका अफराद मिलकर ऐसे मेयारात तैयार करते हैं जिनसे मसनूआत और खिदमात और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका उसूल कायम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो इन माहिरीन की कोशिशों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन यानी IEC और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU जैसे इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को आलमी यौम मेयार के मौके पर इन माहिरीन की मुश्तरका कोशिशों यानी कॉमन एफर्ट्स को सराहा जाता है। आज का पैगाम ये है कि जब लोग और इदारे मिलकर वाज़े उसूल बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। और आज अभी आपने जो नगमा सुना वो फिल्म मिलन का था, जिसे गाया था मुकेश ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। दोस्तों, आज हम नगमों के बीच बीच में, गीतों के बीच बीच में बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में गुफ्तगू हमारी चल रही है। सामीन, तो सामीन, मेयार की बात हो और सेहत व हिफाजत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम रोज़ाना खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं, बिजली के आलात चलाते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ तिब्बी सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं। इन तमाम शोबों में मुनासिब हिफाजती उसूल मेयारात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मसलन खुराक की तैयारी और पैकिंग में सफाई, दुरुस्त मालूमात और मुतल्लिका हिफाजती तकाज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तिब्बी आलात की तैयारी और जांच में भी दुरुस्तगी और काबिल एतमाद कारकर्दगी बुनियादी अहमियत रखती है, क्योंकि वहाँ इंसानी सेहत का मामला होता है। इसी तरह इमारतों की तामीर, बिजली की वायरिंग और गाड़ियों के हिफाजती निज़ाम में मुनासिब उसूलों पर अमल करने से खतरात कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ किसी चीज़ पर मेयार का निशान देख लेना काफ़ी नहीं है। निशान की असलियत, मुतल्लिका मंजूरी और इस चीज़ के दुरुस्त इस्तेमाल की अहमियत होती है। लिहाजा मेयार के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम एहतियात करें और दुरुस्त मालूमात हासिल करें। तो दोस्तों, आलमी यौम मेयार पर हमारी गुफ्तगू आगे भी जारी रहेगी। फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में आप सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप इन नगमों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे और माजी के गलियारों में भी खो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे नगमे इंसान को ज़रूर ऐसी यादों में ले जाते हैं जो बहुत सारी चीज़ें ताज़ा कर देती हैं। तो दोस्तों, फिल्म और नगमों की बात हो रही है और इन गीतों के बीच में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के बारे में, यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में। दोस्तों, अब मैं नौजवान साथियों और जो अज़ीज़ तलबा हैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप मुस्तकबिल के साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, उस्ताद, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी के माहिर बन सकते हैं। आपके लिए मेयार की अहमियत समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की दुनिया में सिर्फ कोई नई चीज़ ईजाद करना काफ़ी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि वो चीज़ महफूज हो, लोगों के काम आए, काबिल एतमाद हो और माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो तजुर्बात में दुरुस्त पैमाइश की अहमियत समझें। अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो मालूमात की दुरुस्तगी और डिजिटल हिफाजत पर तवज्जो दें। और अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपने ख़रीदारों को मेयारी प्रोडक्ट और ईमानदाराना खिदमात फराहम करने की कोशिश करें। याद रखिए, कामयाबी सिर्फ इस बात में नहीं कि हम कितना काम करते हैं, बल्कि इसमें भी है कि हम अपना काम कितनी ज़िम्मेदारी और मेयार के साथ करते हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत और प्यार भरे दिलकश नगमे। और अभी आपने जो नगमा सुना, जो गीत सुना, वो फिल्म आशिकी का था, जिसे गाया था कुमार शानू ने और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। दोस्तों,

आज वर्ल्ड स्टैंडर्स डे है और हम गीत सुरीले गाता जा में बात कर रहे हैं नगमों के बीच बीच में इसी मौजू पर कि आलमी योम मेयार क्यों मनाया जाता है और हमारी ज़िंदगी में मेयार की स्टैंडर्ड की क्या अहमियत है, उन तमाम चीज़ों का हमें किस हद तक ख्याल रखना चाहिए और सिर्फ ज़िंदगी के हर पहलू में उस चीज़ को हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और अब बात उन तमाम सामईन से जो बरसों के तजुर्बे से ज़िंदगी की हकीकत समझ चुके हैं। आपने अपने तजुर्बे से ज़रूर देखा होगा कि जो चीज़ अच्छी तरह बनाई जाए और एहतियात से इस्तेमाल की जाए वो ज़्यादा अरसे तक साथ देती है, लेकिन आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में सिर्फ तजुर्बा काफ़ी नहीं है। नई मसनूआत, नई टेक्नोलॉजी और नई सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल करना भी बेहद ज़रूरी है। ख़रीदारी करते वक्त रसीद ज़रूर लीजिए, प्रोडक्ट की एक्सपायरी और पैकेजिंग के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए और बिजली के आलात एहतियात से इस्तेमाल कीजिए और किसी भी गैर मामूली ख़राबी को बिल्कुल नज़रअंदाज न कीजिए। दोस्तों, बच्चों को भी ये आदत सिखाइए कि वो चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल न करें बल्कि उनके महफूज इस्तेमाल के उसूल को समझें, क्योंकि मेयार का शऊर किसी एक उम्र या तबके के लिए नहीं, ये सबकी ज़रूरत है।

है दुनिया खुशी का है असर। लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, अब होगी सुहानी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है दोस्तों, आप प्रोग्राम गीत सुरीले गातेजा में सुन रहे हैं, खूबसूरत फिल्मी नगमे, और अब मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मंजिल भी हमारी करीब आ चुकी है। तो दोस्तों, आज हम नगमों की बीच बात कर रहे थे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी आलमी यौम मेयारात के बारे में। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आलमी यौम मेयारात के हवाले से जाना कि मेयार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहम किरदार अदा करता है, और आखिर में छोटी सी बात याद रखिए, अच्छा मेयार एतमाद पैदा करता है, एतमाद रिश्तों और कारोबार को मजबूत बनाता है, और ज़िम्मेदारी एक बेहतर माशरे की बुनियाद बनती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छे मेयार की बिल्कुल भी फ़िक्र करें, और ज़रूर ज़रूरी है कि आप मेयार का ख्याल करें। और इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम शब, तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की। तो लीजिए, समाप्त कीजिए पयाम शब।

तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे आए फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी भी अच्छी लगी। दुनिया की दौलत, शानो शौकत और ज़ाहिरी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन माँ की मोहब्बत और उसकी खिदमत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। हमें चाहिए कि माँ की सादगी को कमजोरी न समझें, बल्कि उसकी कुर्बानी और मोहब्बत की कदर करें। माँ की कदर उसकी मौजूदगी में करें, क्योंकि उसका साया ज़िंदगी की सबसे कीमती नेमतों में से एक है।

दोस्तों, वाकई माँ की नेमत कितनी बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछिए जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए माँ की कदर करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली बज़्म में फिर आपसे मुलाकात होगी।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और दो अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरू, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे का जांच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: this is one of the small banks. It's not a big bank. So the credit, when you say credit growth anyways has been quite a steady, quite an impressive credit growth in the last few months. So wo koi issue nahi hai. Credit growth is not an issue. When it comes to MSMEs, it's upon the individual bank to decide what is the kind of mix that is going to kind of a follow. Is it going to do personal finance or corporate finance? And off late, personal finance has been the flavor of the season. But you don't know corporate. But when it comes to small and medium-sized banks, they prefer MSME. They prefer, but there's enough competition. So credit growth should be there, but we'll see. But it sends a good signal, as I said earlier, to induct a strategic partner.
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है. अगस्त में ये 9.92% थी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर बढ़ी है. रसायन, कपड़ा, रबर, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा है. आंकड़ों के अनुसार सितंबर में ईंधन और विद्युत की महंगाई दर बढ़कर 25.85% हो गई, जबकि अगस्त में ये 22.93% थी. विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर 8.37% से बढ़कर 9.76% और प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर 7.76% से बढ़कर 8.67% हो गई है. वहीं खाद्य वस्तुओं और खाद्य उत्पादों की महंगाई दर भी अगस्त के 7.05% से बढ़कर सितंबर में 8.66% पर पहुंच गई. बहुत ही कम शब्दों में अगर इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूं तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो ये आंकड़े क्या कहते हैं?
0: ये आंकड़े समझाते हैं कि हमारे पास चैलेंज है इन्फ्लेशन का
1: जी,
0: और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो WPI होता है, रॉ मटेरियल आपने जिक्र किया, जब आइटम पड़े आपने उसमें जिक्र किया, रॉ मटेरियल कॉस्ट का काफी प्रेशर है और ये आगे चल के और चैलेंज है, इसको आपको फेस करना होगा
1: जी.
2: How is the CPI going to shape up for the month of October? Because for September, it's 5.54%. August, it was 4.83%. So there's a marginal hike in the consumer price index. Do you see this impacting consumers for the month of October?
0: See, there's always this link between WPI, wholesale price index, and the consumer price index. So naturally, after a lag, the spike in the WPI would reflect in the CPI as well, because the raw material, when the basic prices of basic commodities go up, it will automatically reflect in the CPI after a lag.
2: In more news, a Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw has said that trust and cyber security

0: के एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे बहुत बड़ा स्टेक है कनाडियन इकोनॉमी में, और उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशंस और स्ट्रेटजिक रिलेशंस काफ़ी अहम है, और अच्छी बात है कि इस तरफ बात आगे चल रही है।
1: हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पे ऊर्जा की बात है, महत्वपूर्ण खनिजों की बात है, एरोस्पेस की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत इंजीनियरिंग की भी बात हो रही है कनाडा के साथ में, इसका फ्यूचर कैसा नज़र आता है?
0: अच्छी बात है ना, बिकॉज हमें एक्सेस मिलेगी ये इन सब टेक्नोलॉजीज में, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास खाली एक नहीं ना, कई सोर्सेज होने चाहिए टेक्नोलॉजी के, एक्सेस के, पार्टनरशिप के। तो कनाडा एक अहम ओवरऑल जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसके मद्देनज़र ये बहुत स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाला मामला भी है।
2: In more news, central government has notified amendments to the India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA, introducing a principal purpose test, PPT, to prevent the misuse of treaty provisions for tax avoidance and evasion. Under the revised agreement,

0: fall by 2.6 million barrels per day in 2026. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मन मीत आपके लिए, स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। पहला गीत हमने लिया है फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनें।

फिल्म सच्चाई का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इससे पहले आपने फिल्म कुदरत का गीत सुना परवीन सुल्ताना की आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: इस गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी लेह के कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से हर साल 35 लाख यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदम दारचा सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी और क्षेत्र में आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वे 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इनसे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बेहतर होगी। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे

0: दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई है। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnaw said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
2: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
3: 3 crore 20 lakh ho jayegi.
1: Pension schemes for senior citizens and widows, as well as the family benefit scheme, will continue in their existing form. The union minister said the government has also given note to the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnaw said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance. Prime Minister Narendra Modi reaffirmed India's commitment to building a constructive and forward-looking strategic partnership with Canada aimed at delivering tangible benefits to the people of both countries. Mr. Modi met Canadian Foreign Minister Anita Anand in New Delhi and reviewed ongoing efforts to strengthen bilateral relations. During the meeting, the two sides discussed enhancing cooperation in key areas, including trade, technology, security, energy, education, and people-to-people exchanges. Prime Minister Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh tomorrow through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage, and enhance water

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वीकार कीजिए एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही खूबसूरत गीत हैं। पहला गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म बदलते रिश्ते से।

जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात तुमसे, जरा पास बैठो तो कहें दिल की बात, सुनो सुनो धड़कनों की ये महकती सी रात, नजर से नजर मिले तो करूं इजहार, यही तो है चाहत और यही है प्यार।

सोचो कि बस हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, है ना? काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। हम होते और होती हमारी मोहब्बत की बातें, काश हमारी जिंदगी में भी ऐसे हसीन दिन रात होते। ना कोई दूरियां होती, ना ही उदास लम्हे होते। काश ऐसा होता कि तुम मेरे पास होते।

तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कब से जानती हूं तुम्हें। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे न जाने कब से जानती हूं तुम्हें, जैसे सदियों पुरानी कोई अधूरी कहानी हो। अजनबी होकर भी तुम्हें इतने अपने से क्यों लगते हो? ऐसा लगता है कि बस हर धड़कन में तुम्हारी ही रवानी हो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा।

पल भर में क्या हुआ कि जिंदगी बदल गई। जो राह सीधी थी वो अचानक संभल गई। न तुम बदले न हम बदले, मगर न जाने क्यों एक ही लम्हे में दिल की हर बात अचानक बदल गई।

बस मेरे पास रहना तुम हर पल, परछाई बनकर। जिंदगी बहुत खूबसूरत है तुम्हारी मोहब्बत पाकर। दूरियों से डर नहीं लगता मुझे अब जरा सा भी, जब से तुम बस गए हो मेरे दिल की धड़कन बनकर।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर। फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक पकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विदेश मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में 29 देशों के 33 राजदूतों और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं, स्वदेशी तकनीकों और आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के साथ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years, from 2026-27 to 2030-31, with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi yesterday. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above. Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. Mr. Vaishnav said the cabinet has also cleared a productivity-linked bonus of 78 days for more than 11,40,000 eligible railway employees in recognition of their performance.
2: The cabinet today approved a productivity-linked bonus equivalent to 78 days' wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian Railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2,009 crore rupees.
1: PM Modi will launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh called for stronger industry partnerships to help promising student innovators improve their products, respond to market requirements and explore commercial opportunities. The minister said this while felicitating young innovators at the 12th National Level Exhibition and Project Competition (NLEPC) under Inspire Manak in New Delhi. The Pension Fund Regulatory and Development Authority and NPCI Bheem Services Limited have launched Tatkal NPS on the Bheem Payments app. The new feature allows eligible citizens to open a National Pension System account in just 3 steps using existing bank verified KYC and UPI, eliminating the need for branch visits or fresh paperwork. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of Mahila Kisan Divas 2026 in New Delhi today to recognize the women's contribution to Indian agriculture. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and

समय हुआ है 1:11 और 5 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रहिए इस घंटे मेरे साथ और सुनेंगे आप बहुत ही खूबसूरत गीत।

आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, आईना देखूं तो अक्स तुम्हारा दिखता है, किताब खोलूं तो तुम्हारा नाम लिखती हूं। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे कि हवा के हर झोंके में अब मुझे साया तुम्हारा ही मिलता है।

कभी आहट पे चौंक उठती हूँ तो कभी हवा से पूछती हूँ, कभी आहट पे चौंक उठती हूँ तो कभी हवा से पूछती हूँ, तुम पास नहीं हो फिर भी हर पल मैं तुम्हें क्यों ढूंढती हूँ। ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे, ये कैसी दीवानगी दी है तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में कि खुद को भूलकर मैं बस तुम्हारी होकर जीती हूँ।

बहुत सता लिया तुमने, अब और न सताओ। तरस रही है आंखें, अब तो सामने आओ। इम्तिहान न लो मेरे सादे दिल का, अगर मोहब्बत है हमसे तो आके हमसे मिल जाओ।

तुमसे मिलकर खो गए हम न जाने कुछ इस तरह, तुमसे मिलकर खो गए हम न जाने कुछ इस तरह कि अब हमारा खुद पर ही कोई जोर नहीं चलता। जमाने भर की खुशियां अपनी जगह हैं, मगर तुम्हारे बिना अब दिल का एक पल भी हमसे नहीं संभलता।

बहार बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, बहार बन के आए हो तुम मेरी सोनी जिंदगी में, जैसे कोई महकता हुआ ख्वाब उतर आया हो इन बंद आंखों में। तुमसे मिलकर खिले हैं दिल के सोए हुए सारे अरमां, अब तो हर लम्हा नूर ही नूर है मेरी हर एक बंदगी में।

गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, गुनाह कर बैठी आंखें तुमसे नैन मिलाकर, अब ये दिल तड़पता है हर पल तुमको भुलाकर। कैसी ये कशिश है तुम्हारी इन नजरों में कि हम खुद को ही खो बैठे तुम्हें अपना बनाकर।

दोस्तों, लेकिन आपको सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम मिलेंगे तो बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम रात सुरमे लेकर। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदूम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम

में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 39% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है, प्यार करता कौन है ये तो बस हो जाता है, दिल खोने वाले को पता भी नहीं चलता और कोई बहुत खास हो जाता है। ये वो खुशबू है जो हवाओं में बिखर जाती है, इंसान खुद को भूलकर किसी और के एहसास में खो जाता है।

मोहब्बत में दुनिया का डर कैसा, जब दिल लगा लिया तो फिर मुकर जाना कैसा। जमाने की बंदिशें तो आती रहेंगी, इश्क के रास्ते में पीछे फिर कदम बढ़ाना कैसा।

एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी, एक ही हादसे ने बदल कर रख दी जिंदगी। बहुत याद आती है वो अधूरी मुलाकात तुम्हारी, तुम तो मुसाफिर थे, रास्ता बदल गए अपना, पर आज भी ठहर गई है वहीं सारी कायनात हमारी।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 3 बजे के बाद का सफर यानी 3:10 के बाद आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और मैं अमन यादव के साथ आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निमू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4th T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। रात के 3:11 और 30 सेकेंड हुए हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब दिल अक्सर अतीत की गलियों में टहलने निकल जाता है। सोचिए जरा वो कॉलेज के दिन, वो बेफिक्री रातें और वो वादे जो हमने कभी किए थे। आज कुछ प्यार भरी बातों से और भी बातें जोड़ेंगे और भी प्यारे प्यारे गीतों को सुनेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की कुली फिल्म के इस गीत के साथ।

आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस यही ख्याल आता है, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। क्या अपने भी उस पुराने दोस्त या प्यार को याद किया है जिसे सालों से कभी बात नहीं हुई? अगर आज इस वक्त वो याद आ रहा है तो इस गाने के साथ उसे या उस मासूम वक्त को फिर से याद कर लीजिए।

हम रही के इस मोड़ पर बात करते हैं दिल की उस पहली धड़कन की। याद है जब किसी एक खास इंसान का ख्याल आते ही सीने में हलचल बढ़ जाती थी। रात के सन्नाटे में जब सिर्फ आपकी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है तब दिल की धड़कन और भी साफ महसूस होती है।

वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, दिन महीने और साल बस यूं ही सरकते रहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो समय के साथ नहीं बदलता? जवाब है सच्चा हमराही और प्यार। रात का ये पहर हमें बताता है कि चाहे कितनी भी रातें बीत जाएं, कुछ एहसास हमेशा नए रहते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गाना जो वक्त और मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते को बयां करता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है हमराही. जब रात गहरी होती है तो दिल किसी अपने की मौजूदगी तलाशता है. एक ऐसी जगह जहां सुकून हो, जहां कोई बनावट ना हो. जब पूरी दुनिया के से कटने का मन करे तब अपना दिल ही सबसे सुरक्षित घर बनता है.

रात का जो सन्नाटा या जितनी शांति होती है उतना ही ये हमारे अंदर की सच को जगाता है। जो लोग शिद्दत से प्यार करते हैं, शिद्दत से उस प्यार को निभाते हैं, उन्हें जमाने का कोई डर नहीं होता।

कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता नया हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा अमर और पुराना ही महसूस होता है, जैसे युगों युगों का साथ हो। हमराही का मतलब ही यही है कि सफर में कोई ऐसा हो जो हर कदम पर साथ चले। और छोड़ के जा रही हूँ, मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि समय हो गया आपसे अनुमति लेने का। जी हाँ, छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, और मुलाकात होगी अब आपसे 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मुझे दीजिए अनुमति और सुनिए ये प्यारा सा गीत। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पदुम दारचा सड़क, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईजी नागोया में संपन्न एशियाई खेलों में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में 4वें स्थान पर रहा। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में 4थे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 श्रृंखला 2-2 से बराबर हो गई। श्रृंखला का आखिरी मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation five major

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म, फिल्म ही फिल्म से मन्ना दे की आवाज़ में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म अंधा कानून से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म अर्पण से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कलाकार से सुरेश वाडकर और साधना सरगम की आवाज़ में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म किसी से ना कहना से आशा भोसले की आवाज़ में, संगीतकार बप्पी लहरी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म तकदीर से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आगे बढ़ते हैं, यानी समय हो गया है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति का। जी हाँ, ये है अनुराधा पोटवाल की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं, और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे 5:10 पर। जी हाँ, प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबे निम्पो

0: पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन करना शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक रचनात्मक और रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और ये तुरंत बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में देवी कनक दुर्गा की पूजा अर्चना की। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों के विद्यार्थियों को ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ की से ज्यादा की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री दल के सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। पुरुष क्रिकेट में हैदराबाद में चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today.

समय हो गया है 5:11 और 6 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

जीवन एक सुंदर नृत्य की तरह है, जहां कभी खुशियों की धुन बजती है तो कभी चुनौतियों की ताल पर कदम मिलाने पड़ते हैं। जो इंसान अपने मन में उत्साह, विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, वह मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है।

नई सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है। बीते कल में कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ ऐसा जिसे हम बदलना चाहते हो, आज हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका है। इसलिए डर कर नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का स्वागत कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब नेचर की सुंदरता, अपनों का साथ और मन की शांति हमें एहसास कराते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण, ये सब हमें सिखाते हैं कि खुशियाँ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती हैं।